0: मिनट ना, अहिले हाम्रो गर्नेमा 8 बजेको छ।
1: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ। 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: ठाउँ।

देखा गाँव कहाँ खोजू तिम्रो दर्शन पाइन मैले आसो मात्रै पाए यो संसार।

0: पहले हम लोग अनिमा पाँच बजे
1: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।